हो हमले ओए देखौनी हो हमले देखौनी हो हमले ओए देखौनी हो हमले इस तो भी है कारेरा।